0: दुनिया के एक जाने माने केरला हर्बल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट वैद्य भूषण एस जी अर्जुन 35 साल से आपकी सेवा के लिए लाए हैं ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन फॉर एस्मा, सोराइसिस, डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एसिडिटी, वेट लॉस। उनके पास 300 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल दवाइयां हैं। उन्हें मिलने के लिए आज ही आइए यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, 87 ईलिंग रोड, या कॉल कीजिए 07466997575। दैट्स 07466997575।
1: जी टीवी HD पर सारे गामा पा में टॉप 13 कंटेस्टेंट्स के शानदार सुरों का सफर और साथ होंगे गेस्ट जज शान।
2: ये तो शुभारंभ है, अंजाम क्या होगा अगर आगाज इस तरह का हुआ है।
1: एयर इंडिया सारे गामा पा प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल, कल शाम 7:30 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: Give your home its autumn glow up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist. Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you. With Dunelm, the home of homes.
4: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. At all and after protected. T's and C's apply. See website for details.
5: With LV, I can get my car insurance from just £299. Just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount. Because insurance is simple when it's me and LV.
6: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less November 2025 to April 2026. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required.

फिगर बदल दे मेरा फ्लाइट प्लान, पता नहीं समझाऊं तुझे कैसे, अब शायद लगे ये सजा, पता तुझको भी है मुझे मिलके, तुझे कितना आएगा।

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 10:51 on a Friday, up Sunrise Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Wrapping up the second hour with a retro gem from the year 1975, Julie. दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किशोर कुमार की आवाज में. इट ऑल्सो कम्स विद अ स्वीट रिमाइंडर बाय द वे. इन द नेक्स्ट आवर योर चांस टू विन समथिंग स्पेशल टिकट्स टू करण ओजला'स लंदन शो एट द O2 इन लंदन. एंड यस, इट इज दिस संडे ऑन द 4th ऑफ अक्टूबर. कवलजीत वॉज द विनर ऑन दिस शो येस्टरडे. He loved the show in Birmingham. He sent me pictures as well. Are you going to be our lucky winner on the show today? There's only one way to find out. Stay with me, Shabnam Sahi. Good morning.

0: चाहे जब हमको आवाज दो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुकेश जी की आवाज में ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म मेरा नाम जोकर। ज्योति इन एल्सबरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। यू गॉट द फैमिली इन द कार, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू ऑफ टू, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुडे। यू लाइक मी टू से अ बिग वार्म सनराइज रेडियो हेलो टू योर सन अद्विक। अद्विक, is mama driving? Is she taking you someplace exciting? Let me know on 07925 700272. Rumisha says good morning, how are you my friend? Sunrise Radio Breeze ghante ka ye tha, aapki pasand of course.
1: Listener's choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, dimag ke circuit mein jab bhi spark hui hai, stone age se lekar new age tak tarakki hui hai. What a player.
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

0: fan.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: With special guest Icky. Final tickets on sale at livenation.co.uk. Karan Ojna, live.
1: Discover affordable Dubai with South All Travel. Enjoy three nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. South All Travel. Pay less, enjoy more. South All Travel. Atoll protected.
2: Join hundreds of thousands of homeowners feeling warm and fuzzy about their heat pumps.
3: Oh, it's a lovely steady temperature. Walking around without slippers, I am. It is three times more efficient than our old boiler. Stunning.
4: I don't know what's better off, the planet or my wallet. And that £7,500 government grant certainly helped.
2: Plus, if you heat your home with oil or LPG, you may be eligible for a grant of £9,000. Find out more at gov.uk/clean energy.
5: Eligibility criteria apply. See website for details.
6: दुनिया के एक जाने माने केरला हर्बल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट वैद्य भूषण एस जे अर्जुन 35 साल से आपकी सेवा के लिए लाए हैं ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन फॉर एस्मा, सोराइसिस, डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एसिडिटी, वेट लॉस. उनके पास 300 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल दवाइयां हैं. उन्हें मिलने के लिए आज ही आइए यूनिट 8 ट्रेडर वेम्बली 87 ईलिंग रोड या कॉल कीजिए 07466997575. दैट्स 07466997575.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक everyday grand.
8: Hi.
1: Welcome.
8: No, nothing for me. Bas chai.
1: Of course. But try this.
8: All right, you got me. One toasty.
6: Britannia crispy toasty. This festival, grab great in-market offers. Keep something for every bas chai guest. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं. मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज. 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली. ओपन ट्यूजडे टू संडे. This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urta Teer.
9: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
10: Desh bhakti to yaad aa gayi.
11: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
6: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
11: Woh ye border chal rahi hai.
6: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
12: It's not just leaves that are falling this autumn. The price of the Aldi Super 6 is too. You can enjoy award-winning fresh fruit and veg from only 69p, including a juicy saving of 50% on a pack of 5 oranges. Pop in today. You'll be blown away. A bit like those leaves. The Aldi Super 6, a super way to save.
13: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: प्रोडक्शन प्रेजेंट
1: अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए,
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: दी एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd October,
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: रिलीजिंग नेशन वाइड बाय जी स्टूडियोज।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।

0: Check out our latest posts on Instagram at This Is Sunrise.
1: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहित।

तया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: Support your immune health with the Sunshine Vitamin. Ultra Vitamin D from Vitabiotics, the nation's favourite vitamin D brand. Vitamin D plays a lot of important roles in the body, including helping to maintain normal function of the immune system, muscles, bones, and a whole lot more. Ultra Vitamin D from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from Boots, pharmacies, and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर सारे गामा पामे
2: टॉप 13 कंटेस्टेंट्स के शानदार सुरों का सफर और साथ होंगे गेस्ट जज शान।
3: ये तो शुभारंभ है, अंजाम क्या होगा अगर आगाज इस तरह का हुआ है।
1: एयर इंडिया सारे गामा पा प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल आज शाम 7:30 PM ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
5: एंड नाउ द वेदर।
6: आउटसाइड ग्लूमी स्काइज, अ पर्सिस्टेंट ड्रिजल एंड अ चिली विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ।
7: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.